देता हूं। ते पुनगयो मुरीवाई ओ पुड़ेओ ए मराई करो ए तो तोरो योरवर ओ ताकु कोरेरो माउरी थेया ते कोरेरो यो तुमु देवारवर।